देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखे।

तारे। सी तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर किते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई। जो

तुद बिन सिद्धि किने न पाइया, कर्म मिले ना ही ठाकर हाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। आखन औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय दुख।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहा। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास।

जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक।

मन चित वह उद्यम जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया।

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्या वह सब त्या वह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा।

एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब

भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाट कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एकी पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ

तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पहला इसनू मांजना पाएगा, स्वारना पाएगा, अग विच धोखना पैंदा कई बारी भांडे नू, फिर किते जा करके उह शुद्ध हुंदा है। गुरु साहिब कहिंदे बस इस भांडे नू, मन दे भांडे नू इहनू स्वार लै, इस तरह स्वार जिवें इक सुनियार गहने नू चमकांदा है, पट्ठी विच कुटदा है, मारदा है, घड़दा है, फिर वह सिक्का बनांदा, टकसाल दे विच गहना बनदा। इसे तरह भाई तेरा मन जत पहारा, धीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। कह लगे इस तरह पाओ दा जो तेरा भांडा बन जाएगा प्रेम दा, फिर गुरु शब्द विच टिकेगा। प्रेम तो बिना, दया तो बिना, इन्हां गुणा तो बिना नाम नहीं जे टिक सकता। जे को कहना भी फलाना बंदा बड़ा अभ्यासी है, अभ्यास एक वक्री गल है, अभ्यास किसी भी चीज का किया जा सकता है। माफ करने का मतलब यह नहीं भी सानू अभ्यासी नहीं होना चाहिए, अभ्यासी बहुत बहुत लोग ने, नाम दे अभ्यासी ने, शब्द दे अभ्यासी ने, हर चीज का मंत्र का कोई अभ्यास करता है, कोई अपने संसार के किसी गुण का अभ्यास करता है। अभ्यास मनुख नू उस चीज विच परपक कर देता है, पर अभ्यास दे नाल उस चीज का आनंद नहीं आता। आनंद जेड़ा आता है उदे विच अपने आप नू जजब कर देना, ला देना, लय विच बज जाना। जदो बंदा लय विच बज जांदा है, वह चीज विच अभ्यास भावे फिर थोड़ा भी होवे, वह बहुत छेती उस लय ते पहुंच जांदा है। इसे तरह जिहड़े प्रेम दे अभ्यासी ने, वह बहुत छेती वाहिगुरु परमात्मा दे दर ते परवाने जांदे ने। सो गुरदेव जी कहिंदे हरी दाता त्रुट के जिन्नू ए दात दिंदा है, वह गुरमुख वाले गुरु के राह से जिहड़ा तुरदा है उन्नू वाहिगुरु के नाम का अमृत जल मिलता है। महला तीजा, कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए। कलमल दा अर्थ है व्याकुल। कहिंदे जिवें बारिश ना पवे तो कुछ दिनों के अंदर ही सृष्टि के लोग व्याकुल हो जाते। मैं पिछले दिन भी अर्ज की सी भी जिथे सतगुरां ने बाणी उच्चारण की है ना, सानू अपनी सुरत नू उस धरती ते ले जाना पएगा, उत्थों दे वातावरण विच जाना पएगा कि किवें सौण पादों दे महीने विच जे पंजाब दी धरती ते बारिश ना पवे, मीह ना पवे, ते उत्थे दी तपश, उत्थों दी गर्मी बंदे नू की निक्के तो निक्के जीव पशु पंछियां नू व्याकुल कर छड़दी है। वह व्याकुल हो जाते ने, सारे त्राहे माम करते ने कि किते वाहेगुरु कृपा करे, कोई बदल दी कणी दिसे, बदल दा रूप दिसे, ते अंदर नू चा पवे, अंदर नू ठंड पवे, अंदर नू उमंग पवे। ये उस धरती दी बाणी है, ते सानू उस धरती ते अपनी सुरत लिजा के समझना पएगा कि किवें बंदा व्याकुल हो जांदा। हुण इत्थों दे बच्चियां नू की पता कि भादों दा चौमासा की है, ते सावन विच मीह ना पवे ते हालों बेहाल बंदा किवें हो जांदा है, ये सानू उत्थे जाके पता लगेगा, उत्थे दे वातावरण तो ही पता लगेगा। ते बाणी नू जे समझना है ते उस थां ते उस धरती ते अपने मन नू अपने आप नू लजाना पएगा, हाजिर करना पएगा। सो गुरदेव जी कहिंदे ने कलमल होई मेदनी, व्याकुल होई मेदनी, जदों मीह ना पवे, बहुत ज्यादा औड़ लग जाए, ते फिर सारी धरती दे जीव व्याकुल हो जाते हैं, सारे अरदासां करते। असी आप देखते रहे हैं छोटिया हुंदिया, लोग नगरां पिंडां दे विच जे सौण भादो दे महीने विच बारिशां थोड़ियां लेट हो जाणियां ना, आपो अपने इष्ट नूं लोग मनांदे ने। एक नगर दे विच कई धर्मां दे लोग रहिंदे ने, कई मानतावां दे लोग रहिंदे ने, कोई किसे देवी नूं मना रहा है, कोई किसे देवते नूं मना रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा, कोई इंद्र की पूजा कर रहा, कोई मनिंद्र की पूजा कर रहा, हर कोई इस भाव विच लगे हुए ने कि किते ना किते वाहिगुरु कृपा करके तरस करके कोई मीह की कणी इस धरती ते पा के नू ठंडी ठार कर दे। व्याकुल हो जांदा है जीव जदो इन्हां दिनां दे अंदर बदल नहीं गरजदे, मीह नहीं पैंदा, फसलां सुक जांदियां ने, जीव त्राहे मरने शुरू हो जांदे ने, धरती दा सीना जिहड़ा है ਉਹ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਲਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਵ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ,

अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त नन्ना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध एव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जो

रब गौणी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु

ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावै जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शुभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख

0: समथिंग रॉन्ग,
1: कोई ना कुछ इतनी आवाज छड़ी हुई है ना, तो टेस्ट दे लाया है। हाँ, डायरेक्टर रहना हूं ना आप।

0: नहीं चेंज कर दो, चेंज करो, नहीं चलेगा।
1: ओके नहीं चलेगा, नहीं कह लाइए तारे।

गनी न आवे। कांखी एक दर्श तुहारू, नानक उन संग मोहे उदारू। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जब तब पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माही समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रदान। प्रभ को सिमरह से बेमहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला। नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी। प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे। प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता। प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अनदक नेरे। प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग। नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे। प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी। प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन। प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिन को प्रभ मया। नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा। हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन।

जगत के प्रभसात अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल हुए अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार्ग जात केला तै हर नाम संगूत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याहिऐ नानक गुरमुख परम गत पाइय छूटत नहीं कोट लक बाही नाम जप तै पार पराही अनिक बिघन जय।

दरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रवदीना, हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग पीते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तीन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वडभागी पाईऐ, संत की सेवा नाम त्याईऐ, नाम तुल कछवर न होय, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोय, सलो बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेके सर्ब टंडोर, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिम

में बहुरतना। शरीर कटाए हम मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सर थीवे। अग्न माहे होमत प्राण, कनिक सव है वर भूमदान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ भी होमे मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीरथ देह छुट्टे, गर्भ गमान न मनते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे। जल तू वै बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। बहुत सियानप जम का भव व्यापै, अनिक जतन कर कृष्ण त्रापै। पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूट से नाही उपयाद, मोहे व्यापह माया जा। अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संगे होम मैं छूरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आप

हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो।

नानक जे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल थे कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख पयाऊ बैठ को दैन एहु निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसह त्यागवर संग रचना ऐसे दोग मुड़ंद व्यापे नानक काढ लियो प्रभ आपे आदि।

शिवराज जे परसा सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाऊ आप गावाए सो हर गुण गाऊ प्रभ कृपा ते हुए परगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातूतम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपू कछु न किन्हू लया जित जित लाभ तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ श्लोक अगमगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता हुए सुनमीता नानक बिनवा।

साद के संग न बिरता जावे। पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उतरै सा सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ। साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग पहे आज्ञाकारी साध संगत पही हमारी। साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा बेद न जाने जीता सुने तीता वख्यान। साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा पूछते ऊंची साध की शोभा मूछते मूची। साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे कस बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख।

ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाउ नानक ज्यो पाव का सह सुभाउ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरिना

रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी संभाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन बाहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व में पिखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिखै नितर, सादगी टैल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नान कोट मध्य को ऐसा परसो, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हु वै ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप जड़ैव रह नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मंतन अर्पै विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्मै सुदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल,
सुखम

जपै तिसकी गत हुए, सासन पावै जन कोई, कर कृपा अंतर उरतारै, पस प्रेत मुगद पाथर कौतारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मानु पार ब्रह्म का निवास, किसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाहे तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संगात्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं बियो, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर रखे तैसा तिन्नाऊ, आपे

रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भए निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते कांत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर वृख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है, तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट की रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जक किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नीरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरह, कई कोट बोजोनी फिरह, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालह थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड,

कई कोट कीने बहुपात प्रगते हुए प्रमाहे समाता का अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है को नित्रे कई कोट नाम रस पी वह अमर भय सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज सुमाव है अपने जन को साथ साथ सुमारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोए नानक जिस बलिहारण है जल थल मही अल सो इष्टपदी करण करावन करण जोग जो जिस भावै सोई हो किन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे तार अतार रहा वै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनिक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मह रहा सुमाई प्रभावै मानुख गत पावै प्रभावै तां पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्ति राखै प्रभावै तां हर गुण भाखै प्रभावै तां पतित उदारै आप करै अपन विचारै दुआ सिरियां का आप स्वामी

पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक सास सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग उतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अगन सागर तरहु हर धन के पर लेहु भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारु जीव गुण गोविंद अमृत रस पीयु चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लुकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद वाजै सुन सुन अनद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरण ही आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर भय सबरे अमृत नाम साध संग लैन सुख प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनरस न कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक निभे खेप हमारी प्रभ की उस्तुत करो संत नीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान गुरु प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त

ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मत सगल देवदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ता की गत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध शासन मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देहे तत्काल उदारै निर्मल सोभा अमृता की बानी एक नामन माही समानी दुख रोग बिन से पै परमु साध नाम निर्मलता की कर्म सब ते ऊ

जाने कौन कूत कीता पसाऊ एको कवाऊ तिस ते होए लख दरियाऊ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाउ असंख पूजा असंख ताप ताउ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाए जेता कीता तेता नाउ विण नावै नाही को थाउ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वखत कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे हुवै लेख पुराण वखत न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सर ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरने किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाणै अगै गया न सोहै पातालां पाताल लख आकाशां आकाश ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असुलो एक धात लेखा होए ता लिखी है लेखै होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया नदियां अतैवाह पवै समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जित मन होना भी सरा है अंत न सिखती कहना अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ
ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗਾ ਹੈ ਜੋਤ ਅਪਾਰ ਕਿਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟ ਹੈ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ ਏ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੂਹੇ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਹੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ ਆਖ ਹੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਨ ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਹੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਹੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਹੈ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਹੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਹੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੀ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਹੈ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਹੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਹੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੀ ਗਾਵੈ ਹੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵੈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾਏ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਾਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬੇਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹ ਲਿਖਿਆ ਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ
आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस ए त्राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मनसोर जोर ना श्रुति ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल किस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछै पछुताए तिथै घड़िया सूरत मात मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोद महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना उहे मरह ना ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा है ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिव कार वेखै विघ सह कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियारो अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धारत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वा पातशाही दसवीं छपाए छंद तुआ प्रसाद
चकर चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज केहि जय कोट इंद्र इंद्राण साह सहाण गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वा सर्व नाम कथ है पवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाली नमस्तवंग कृपाली नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरखाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलासरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसं अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपाहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सात अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंब है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पहने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पहने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपहुगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते
नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो साह साहं नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तं इशनानं, नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा विरुद्ध करता अधो उर्द अर्धं अगं ओग हरता, परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्तहमं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं, पूजंग प्रयात छंद, अगाधे आबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो शाह शाहे नमो माह माहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते, नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट शांत तुआ प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल पूगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले, वाल शांत तुआ प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त अजून पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत अजून आद अशेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होए फैलो अनुराग, नाम काम बहीन पेखत तामहु नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तदाहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जा नहीं जिह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जान नहीं के हे जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुर तीन, लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जेह जाप, आद देव अनाद मूरत थापेओ सबै जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गड़न भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश, अंग राग न रंग जाका है जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम, आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख, सर्वशास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नित, कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित, मधु भार छंद त्वा प्रसाद, गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश, निस दिन अनास आजान बाहु शाहान शाहौ, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान,
इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मोकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिस आदिस अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशेज देस के अभिज भेस के अगंज करम के अभंज भरम के अभिज लोक के आदित सुक के आवतूत वरण के बेभूत करण के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वरण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के आन पाओ अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाक विवैव है के गय बोल गैब है के अपुल गुना है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फाहिम है के आकल आलम है के साहिब कलम है के हुसन अल वजू है तमाम उल रजू है हमें सुल सलाम है सलीकत मुदम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीन अल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधन है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तुरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरकुत स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभं सर्वपागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अशेज है अशुत है के नरकं प्रणास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विपोगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विपोगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है
चरपट शांत त्वा प्रसाद सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्वा प्रसाद नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न तात है न मात है न जात है न पात है निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहंद है करीमल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब की राह है कि नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शांत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुपव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपव अनास तृत तर तुरास अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरुपर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजिज न बात अन झज गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शंग तो प्रसाद करुणा लह अरकाल है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्व पर है सर्व कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजबा कृत है अमृतामृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरे गंजन है रे प्रतापन है जप जापन है अकलम कृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म वस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग काम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास अकाश
अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयास छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुकर्मं बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कत्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तो रंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पये तो कहां पहे भूपत अंत कौ न गेही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबा सो साज सना दुर जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तुर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे यार अब चारे सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़े गड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बौ पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इशनान गजादे कदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्री पत के प्रस है पाग ते नार फेर न दे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तायो
ਕੂਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੋ ਭੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਰ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਹੁ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗ੍ਰਿਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਸ਼ਾਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਭਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰੇ ਹਉ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦਾਇਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਾਧ ਕੀਓ ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਪੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਘਾਟ ਘਾਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਾਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਅਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਨਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨ ਤਨਹਿ ਪੇਵ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਇਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤ ਭੂਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਗਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਧੁਜ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤਹਾਵਾਏ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤ ਕਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰ ਹੋ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੂ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤੇ ਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਬਰਾਤਾ, ਕਿਲ ਵੇਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਅਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜਬ ਪਹੇ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤ ਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ, ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੀ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਾ ਸਹਸ ਪਣ ਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿ ਜੈ, ਭਾਦਰਵ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰਸ ਪਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਸੁਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ, ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੁਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਟ ਕੈ, ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਟ ਕੈ, ਕਹਿਓ

जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरप्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वाहो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नावने दो किसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहेला साचै कर गावो गावो ता सोहेला कर साचै जिथे सदा सच ते आवहे सचो ते आवै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कहे नानक सच सोहेला सचै कर गावहे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुम्हारी करो नित आस प्रभु, मोहे का बगाड़ लावेंगे सुत अपरा।

वेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजो विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद।

0: जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक।
1: महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीरथ भव्या ते तो लव्या।

को जागे गुरबिन सूता पगोपे दाना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधा पतगवाई मिलना वह किस्ता न पाई रह बेपाणी मणि मसानी।

महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समादंग मुख चूट में बुकर सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दो तोती बस्तक पाटंग जे जानस बरमंग समरंग पोपो।

पण मुआ पण पालिए पंड हुआ बंदान सो क्यों मंदा किए जित में राजान पंडो ही पांडु उपजय पंडे बाजना कोई।

मन मुख थाए न पाए, पाखंड भगत न हुवई, पार ब्रह्म न पाया जाए। मन हठ कर्म कमावणे, थाए न कोई पाए। नानक गुरु

पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर।

सो भगत जिन चित कर तुद अपड़ कोई न सकै सब चख चख पवै झाड़। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदह ते ब्राह्मणा जे चल्लै सतगुर पाए जिन कह

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चितलाय। नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाय। महल्ला तीजा सतगुरु।

अत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावणे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनु वापे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी सब वडिआईआं हर नाम विच हर गुरमुख ते आईए जे वस

पौड़ी जितने पातशाह सहराजी खान उमराव सिकदार हैं तितने सब हर के किए जो किच हर करावे सो उए कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कैवल है तिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गुले कर सतगुर आग।

सदा सहज सुख मन वसिया, सच्चे स्यों लिव लाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले, हौ मैं मोह वधाया। पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले, दूजे पाई चित लाया। जोगी जंगम सन्यासी भुले, विण गुर तत् न पाया। मन मुख दुखिए सदा भ्रम भुले, तिन बिरता जन्म गवाया। नानक नाम रते सही जन समदे, जे आपे बख्श मिलाया। महला तीजा, नानक सो सालाही है, जिस वस सब किच होए। तिस हसरे वो प्राणी हो, तिस बिन अवर न कोए। गुरमुखे अंतर मन वसै, सदा सदा सुख होए। पौड़ी

फिर है सब जगत में, कोई मुंह थुक न तिन कौ पाए। पराई बखिली करह अपनी प्रतीत खोवन, सगवा पी आप लखाहे। जिस धन कारण चुगली करह सो धन चुगली हथ न आवै, कोई भावै तिथै जाहि।

स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौधी पित देख कै सब आए पए सतगुर की पैरी लाहो न सबना कहो मनो गुमान। श्लोक महला।

तिना घर मोहन हम मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मति हर रस ना जानन जिनी अमृत।

जम जोहे न सकै तिस हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभ वसै औ सद कुर्बान तिस जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना

सोई वर्त्या जगत मह घट घट मुख भणिया बहुत वडियाईया साहिब नह जाही गणिया सच सहज अनद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया।

सुर सरी मिलत पवित्र पावन हुए जावै। ए वड़ियाई सतगुर नरवैर विच जित मिले तिसना भुख उतरै।

मोहे समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजै हर हर रस लपटयो।

को हर्षमान नहीं राजा के भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा रहा तेरो जन हुए सोई कत डोले तीन भवन पर छाजा हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै ना अंदाजा चेत।